बेटे तेरा बाबू एक बढ़िया मानस था, सारा काम एकला देखा करता। अब उसके जाए पाछे सारी जिम्मेदारी तेरे पर आ गई, पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान था और खेती बाड़ी पर ध्यान था।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को अपने मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर और सर्च करें रेडियो डीएस 89.6 और हमारे रेडियो ऐप को इंस्टॉल कर आप आनंद ले सकते हैं गंगापुर सिटी का तड़का एफएम चैनल का, जो मनोरंजन का सरताज है।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं।
3: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों, फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के साथ हल्की बूंदाबांदी के साथ आप सुनेंगे आज का मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, सुबह के 10:01 का सम हो चुका है और आरंभ करते हैं बिना वक्त गवाए आपका मनपसंद और फेवरेट कार्यक्रम

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: हेलो
1: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं।
1: हारून जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: ग्राम अकबरपुर है, जिला विदिशा है, एमपी।
1: मध्य प्रदेश एमपी से। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है बॉर्डर।
1: जी गाना
0: याद आती है कुमार सानू, विनोद राठौर और उदित नारायण की आवाज में।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के गाना। रेडियो डीएस में कॉल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: राजेश मीना,
0: राजेश मीना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी, कृष्णनगर।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गदर मूवी का सुनना चाहते सर, मैं निकला गड्डी लेके।
0: बिल्कुल सर, बारिश में आराम से देख के चलना, पर गड्डी लेके तो जा रहे हो।
1: वैसे भी लोको पायलट हूँ सर मैं।
0: अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा। सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।
1: ठीक है सर, थैंक यू।
0: बाय।

के साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएसईटी 9.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: सवेरा हो गया है, चिड़ियाँ घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
1: डियर साइंस एकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: नाम तो चौधरी अर्ज कर रहा हूँ सर, वाराणसी से।
1: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
0: गाना तो सर आज पेट लेके आए।
1: बताएं सर।
0: रेडियो डीएस के लिए समर्पित है गाना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। गाने के बोल बताएं।
0: मौसम है भीगा भीगा रे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पे गाना रेडियो डीएस में खुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद।

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं साहब आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: तुलसीराम पीलूखेड़ा से। तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म का नाम है दोस्ताना और गाने के बोल है कितना आसान है कहना भूल जाओ।
0: बिल्कुल। मौसम कैसा है सर?
1: हो रही है बरसात, धीमी धीमी हो रही है।
0: अच्छा, धीमी धीमी चल रही है क्या?
1: हाँ जी।
0: चलो आनंद लो और गाना सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का।
1: धन्यवाद।
2: वक्त के मारों से हर जख्म भर जाता है, आज नहीं तो कल तुम मुझे भूल जाओगे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहें बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों, आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: जी, नाम मेघा।
1: मेघा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: मेघा जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से? बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।
0: क्या सर?
1: सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: ओके वेलकम।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहें बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: शिवम।
1: शिवम कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं शिवम जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: चिल लाइफ।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको चिल लाइफ।
0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते सर।

दोस्तों 10:45 का समय हो चुका है। अब हमारी ऑफिस कॉलिंग लाइन ऑफ हो चुकी है। आप कॉल करके परेशान ना हो, आप सभी की फरमाइशों को पूरा किया जाएगा। बने रहे मेरे साथ रेडियो डीएस पर।

0: इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रही हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर।

0: नमस्ते सर।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं।
0: सेनाथ
1: सेनाथ जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी संजय कॉलोनी।
1: बताएं सेनाथ जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: बारिश में
1: बारिश में?
0: नहीं, भीगी हुई है रात, जल रहे हैं हम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सेनाथ जी आपकी फरमाइश के। सॉन्ग रेडियो रिएक्शन कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: गुलशन।
1: गुलशन कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
0: ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम?
1: है जी,
0: ओ सावन राजा कहाँ से?

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास. बिफोर कमिंग इन डीएस, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन. नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन. द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी. रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट. लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग.
1: हेलो
2: जी, नमस्ते सर.
1: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका.
2: सर, ठंडी राम गुजर बोल रहा हूँ, ग्राम दरखा से.
1: दरखा से ठंडी राम जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप.
2: हम तुम दोनों मल मल के दिल के गीत.
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद. हेलो

0: नमस्ते, नाम बताएं आपका?
1: शिवानी मीना।
0: शिवानी मीना जी कहाँ से बात कर रहे हैं? शिवानी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मुझे भजन सुनना है, श्री राम की गली में तुम जाना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश के भजन रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।

0: मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: रईस खान।
2: रईस खान जी कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: तुमसे मिलने को दिल करता है।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे गाना रेडियो DS में खुल गया बुध।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहें बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
4: जी नमस्ते।
5: नमस्ते,
4: नाम बताएं सर आपका।
5: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान सर। जी
4: बताएं रूपचंद जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से?
5: सर आज गीत सुनना, पिक्चर का नाम है शतरंज और गीत के बोल है दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं।
4: बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सा गाना है सर, सुना रहे हैं आपका, आपकी फरमाइश पर रेडियो DS में कुल किया बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्रचार अच्छा होगा, तभी तो व्यापार बड़ा होगा। इसलिए अब अपने शॉप, शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज ऑडियो बाजार के साथ।
1: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में, सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
0: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
1: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में। अभी नीचे दिए गए व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
0: आपका
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: हर बीच में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: नमस्कार सर, नमस्कार।
2: नमस्ते सर, नमस्ते। हल्की बूंदा बांदी के साथ बहुत बहुत नमस्ते। क्या हाल चाल है आपसे?
1: आज तो एक बात है ऋषि साहब, जोरदार मौसम कर दिया आपने।
2: अरे सर, हम नहीं, प्रकृति करती है मौसम को। नाम बताएं आपका।
1: हाँ, रतनलाल बोल रहा हूँ, महू पुलिस चौकी के पास से।
2: अच्छा, बताएं रतनलाल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तो वो सुना था, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले।
2: कोई नहीं सुनेगा सर, बरसात आ रही मुश्किल से। सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश पे गाना रेडियो डीएस में। गुल के धन्यवाद।
1: ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: हेलो,
4: हेलो
3: जी, नाम बताओ सर।
4: अंकित।
3: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी।
3: बताएं सर, गाना बताएं।
4: तुम नहीं आना।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नाम बताएं।
1: क्या
0: नाम बताएं आपका?
1: लक्ष्मी मीना
0: लक्ष्मी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी?
0: बताएं लक्ष्मी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: ओ, इश्क दे बनियार वाला।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं लक्ष्मी जी, आपकी फरमाइश कहता हूँ।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: मोनिका गुर्जर,
1: मनीषा गुर्जर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं मनीषा जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से? बिल्कुल
0: किताब सॉन्ग
1: सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश से सॉन्ग।

सर मैं विनोद कुमार शर्मा नहर रोड खाटू श्याम मंदिर से बात कर रहा हूँ। मुझे मेरा मनपसंद गाना ये मौसम ये बारिश सुनाया जाए सर ऋषिकेश जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नाम बताएं।
1: प्रिंस मीना, गंगापुर
0: कहाँ से? खाना
1: सिटी, कृष्णा कॉलोनी।
0: बताओ सर।
1: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। थैंक
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश के। खाना
1: यू सर, थैंक यू सर।
0: वेलकम।

मेरे साथ ट्यून इन कर रही हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।

0: हेलो
1: सर, घासराज।
0: नाम बताएं आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रंगापुर सिटी श्रीनगर।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बाबी बिल्कुल को, बिल्कुल
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

दोस्तों 11:37 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडियस गंगा पुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना दोस्तों लौट कर आते हैं थोड़ी देर में इसी कार्यक्रम में आप सभी की फरमाइशों को पूरा करने के लिए। तब तक आप सुनते रहें लगातार ये फिल्मी गाने।

0: मेरे साथ ट्यून इन कर रही हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: अच्छा बिल्कुल आ गए महाराज। सुना हो सर आप?
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
2: जी भी है योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: नजर के सामने जिगर के पास से फिल्म आशिकी से।
1: बिल्कुल। कैसा मौसम है योगेश जी छत्तीसगढ़ में फिलहाल?
2: अभी बादलों से घिरा हुआ है भैया।
1: आज हमारे गंगापुर सिटी में तो बरसात आ रही है सुबह से बहुत अच्छी।
2: अच्छा,
1: बिल्कुल आ गए महाराज। सुना हूँ सर आपको, आपकी फरमाइश है।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहें बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: आपका
1: मोहम्मद शहवाद।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: यूपी फरीदाबाद अमेठी प्रदेश से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: एक परदेसी मेरा दिल ले गया जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश के गाना रेडियो डीएस में पूल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: अपना बोल दो।
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: असलम खान।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
3: ईदगाह रोड।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: गोली 315 से तन्ना शूट करूंगा।
2: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश से। हेलो।
4: हेलो,
2: नाम बताएं।
4: कोमल।
2: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी।
2: गाना बताएं कोमल जी।
4: सर वो आज मोनिका का बर्थडे तो गाना लगा देना।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का सॉन्ग। हेलो।

0: मेरी साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: नमस्ते जी। नमस्ते सर
2: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर।
1: हाँ सर, यहाँ जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी जी।
2: केशव जी बताएं कौन सा गाना सुना चाहते हैं
1: जी? आज सुना दीजिए इसका फिल्म का जुदाई फिल्म का गाना, मार गई मुझे तेरी जुदाई।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।
1: ओके सर जी।

0: हो?
1: जी नाम बताएं।
0: कौशल मीना।
1: कौशल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगा पुर सिटी।
1: बताएं कौशल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: बागीगर चंपल का।
1: बागीगर कौन सा गाना है सर?
0: गाना है ये।
1: ठीक है सर, सुना रहे हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
2: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
1: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
2: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
3: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
1: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

0: मीना जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
0: अंकित जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: माफिया।
0: हाँ बिल्कुल सुना रहे हैं मीना जी आपकी फरमाइश का हिस्सा।
1: जल्दी से जान लेना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: ¿Quieres que te corte la cabeza? Hazte para allá.

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
2: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप, शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
3: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
2: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
3: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
4: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
2: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।
5: जय भवानी दादा, नाम बताएं आपका।
6: विमल शर्मा, मऊखला, गंगापुर सिटी, राजस्थान, ये सब इंडिया में है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, विमल जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आज।
6: बरखा रानी जरा जब के बरसो।
5: क्या बात है, मौसम का पूरा आनंद लेना चाह रहे हो।
6: अरे बस नहीं चाहिए साहब, मजा आ जाएगा।
5: बिल्कुल बिल्कुल, सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश के बाद। रेडियो डीएस में तुल किया, धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
2: रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ सर
0: जी, नाम बताएं आपका।
1: अंकित जी।
0: अंकित जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तोड़ दिया नाच नाच के गात गजब डीजे का मुझे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप। हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
2: ममता जी।
0: ममता जी कहाँ से बात कर रहे हैं? पता है ममता जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: एक वारी आके मैंने गले लगा।
0: अजी
2: एक वारी आके गले लगा।
0: बिल्कुल सुना रहे ममता जी आपकी फरमाइश के साथ।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: सर नमस्ते। गजेंद्र
0: नमस्ते, नाम बताएं सर आपको।
1: मीणा
0: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: क्या ही कहूँ।
0: सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का गाना।

0: फटाफट रेडी करो यार, लेट हो रहे हैं। लाइट रेडी करो यार। अरे क्या हो रहा है यार?
1: हेलो,

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: अभिषेक लोधा।
0: लोधा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: डेरा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश।

0: जी नाम बताएं।
1: मीनाक्षी।
0: मीनाक्षी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तुमने हमसे वादा किया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं गुड़िया, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
4: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप, शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
5: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार।
4: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
5: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में। व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाएं।
6: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
4: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।
7: हेलो
8: जी, नाम बताएं। हाँ जी,
7: पूनम। पूनम,
8: पूनम जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
7: गंगापुर सिटी।
8: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
7: प्लीज चलवा देना, किसी का भी कहीं जा रहे हो तो मेरे को फोन नहीं मिलेगा। प्लीज चलवा देना लावा पावा चीज तो मिलता है ना, तो वो बस अकेले के लिए शिको भी बात हुई।
8: कौन सा गाना है?
7: लावा पावा चीज तो मिलता है ना, तो वो बस अकेले के लिए शिको भी बात हुई।
8: आपका गाना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा साफ बोले आप।
7: पंजाबी सॉन्ग है।
8: पंजाबी सॉन्ग कौन सा है?
7: लाला पागल से मिलका है ना, तो वे जैसा केनू केनू इसी के भी बात ले।

0: मेरा नाम वंदना।
1: वंदना कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: हम गंगापुर से।
1: बताएं वंदना जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: तेनु शरारत सिखावा जदो नैना लड़ावा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं वंदना जी आपकी फरमाइश से गाना रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: दोस्तों 12:53 का समय हो चुका है और इस कार्यक्रम को यहीं विदाई देते हुए जिन श्रोताओं की फरमाइश हम पूरी नहीं कर सके आज़ादी को लाने की वजह से, उनकी रिकॉर्डिंग आपको उनकी आवाज़ ज़रूर सुनाना चाहेंगे।
1: हेलो,
2: नाम बताएं।
1: मोनिका।
2: मोनिका जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रेलवे कॉलोनी।
2: मोनिका जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: हाँ, बिल्ली सलोनी तेरी झील सी आंखें।
2: बिल्कुल सुन।
3: हेलो
2: हेलो, नाम बताएं सर।
3: बिट्टू मीना।
2: बिट्टू जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: नशे कॉलोनी।
2: गाना बताएं सर।
3: राजस्थानी सॉन्ग।
4: ललित ललित।
2: हेलो,
5: नमस्ते सर
2: जी। नमस्ते, नाम बताएं।
5: अश्विमीना।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: मंगापुर सिटी।
2: गाना बताएं सर।
5: मासूम शर्मा का कोई सॉरी।
4: ललित ललित।
2: ललित जी कहाँ से?
4: मंगापुर सिटी।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुना। हेलो
6: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
6: सच्चे पूजा।
2: कहाँ से?
6: कैसे खोले मंगापुर सिटी से।
2: गाना
6: जिससे दिल ने कहा है
2: जी, नाम बताएं।
7: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
7: रफी खान लोग मजरी पीछे सर।
2: गाना बताएं सर।
7: आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं।
2: बिल्कुल सुन। बात करें सर।
8: गंगा।
2: हेलो
8: हेलो
2: जी, नाम

0: नमस्ते।
1: सविता गुजर।
0: सविता गुजर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेश गया था।

0: रेल।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश से।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: अनिकेत।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
2: तमाम
1: बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: देशभक्ति गाना प्रथम
1: सुन रहा है सर आपकी फरमाइश से। हेलो
3: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
3: अशोक सिंह।
1: कहाँ से बात? हेलो
4: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
4: नाम तुलसी राम मीना पीलू खेड़ा।
1: नाम तुलसी राम जी पीलू खेड़ा से, गाना बताएं।
4: आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने लगे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश से। हेलो
5: हेलो, नमस्ते सर।
1: आप बताए। नमस्ते,
5: कविता गुजर।
1: कविता गुजर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: गंगापुर ठेठी।
1: बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेश गया।
1: बिल्कुल सुनता जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: दोस्तों दोपहर का एक बज चुका है और आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रम की ओर लेकर चलते हैं आपको आपके मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम नए तराना में।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक

0: विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
1: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
2: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
3: जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस। डीएस साइंस एकेडमी, पेरेंट्स ट्रस्ट, स्टूडेंट्स शाइन।
4: रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
5: यहाँ हर बीट में है

राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

0: दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के साथ दोपहर के 2 बजने वाले हैं। नए तराने कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर आपको लेकर चलते हैं भूली विसरी यादें कार्यक्रम में। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
2: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
1: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
2: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
3: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
1: आपका
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप, शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
2: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में, सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
1: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
2: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
3: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
1: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।
4: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
5: डियर साइंस एकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: दोस्तों अभी आपने सुना बैक टू बैक गानों का ये कार्यक्रम। दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, घर में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आप सुनेंगे थोड़ी देर में आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम राजस्थानी गीत।
1: प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
2: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
1: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
2: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
3: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636 7188 93 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
1: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

0: साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। गंगापुर सिटी।

0: मेरे साथ ट्यून इन कर रही हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
2: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
4: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
3: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
4: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाएं।
5: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
3: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।
6: शहर का नया मैजिक रेडियो DS89.6।
7: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीणा। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6378024475। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
6: शहर का नया मैजिक रेडियो DS89.6।

दोस्तों भी आपने सुना राजस्थानी कार्यक्रम पर आधारित ही राजस्थानी गीत। और दोस्तों इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों शाम के 4:30 का समय हो चुका है और गंगापुर सिटी का फिलहाल तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के साथ अब लेकर हाजिर रहूँगा आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: नाम बताएं सर।
1: हिमांशु मीना।
0: हिमांशु जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी श्रीराम अष्टक।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तेरे जैसा यार कहाँ।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश से गाना।
2: प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
3: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
2: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
3: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
4: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
2: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

0: हाँ जी नमस्कार सर।
1: जी नमस्ते सर,
0: आप रेडियो स्टेशन से बोल रहे हैं?
1: यस सर, ऋषि मीना बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं गंगापुर सिटी।
1: नाम बताएं सर आपका?
0: मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता।
1: गुप्ता जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है।
1: बिल्कुल सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो। हाँ। के बनने वाला।

0: सूरज।
1: बोलो चंदा।
0: उस चांद को देखो ना, कितना जालिम है बैरी, दौड़ा चला जाता है, जल्दी डूब जाएगा।
1: डूब जाने दो, मेरा चांद तो मेरे पास है।
0: पास हो इसलिए तो जी चाहता है ये रात कभी खत्म हो, वक्त थम के रह जाए।
1: अजी बेहतर है वक्त, हम अपने प्यार में बह जाएंगे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो,
3: तीन लोगों मसक्के।
2: हेलो
3: मसक्के तीन। हेलो
2: जी नमस्ते, नाम बताएं सर।
3: अजी नमस्कार,
2: नाम बताएं।
3: सुनाओ साहब, बारिश वारिश कैसी है उधर गांव में?
2: गांव में सवाई माधोपुर में बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन बरसात है सर।
3: आज तो गंगापुर में बढ़िया,
2: गंगापुर में ही नहा रहे हैं सर, आज गंगापुर में ही मजे ले रहे हैं बरसात के।
3: अच्छा
2: हाँ, पता है आपका
3: नाम? नाम बाबू खान है।
2: बाबू खान से बात कर रहे हैं?
3: अपने गंगापुर जी की।
2: बताए सर, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
3: अब सावन का महीना, सावन का महीना, पवन करे सोर, या ये सुनवा दे और क्या।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का।

0: दादा नमस्कार।
1: थैंक यू सर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताओ।
2: कोमल।
1: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर।
1: बताएं कोमल जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: वो झूठ नहीं बोल रहे हैं।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपके फरमाइश। 89.6 DAB।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: हंडीराम गुजर बोल रहा हूँ सर, गुजर चाहते।
0: हंडीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: सर? गाना है ये है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश।
1: ओके सर।

0: मेरे साथ ट्यून इन कर रही हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
3: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
2: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
3: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
4: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
2: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

0: हेलो
1: नाम बताए सर। मिश्रा
0: मिश्रा जी, सर नहर रोड से।
1: जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: चांदनी ओ मेरी चांदनी
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।

पूछिए।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का एक हाल।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर, यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए, दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: धन्यवाद सर।
1: हेलो हेलो जी, नाम बताए। हाँ जी बताए, प्राची जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: हेलो
2: हेलो, नमस्ते सर।
1: नमस्ते, नाम बताए सर।
2: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ महावीर जी से।
1: चौधरी जी बताए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
2: आप? सर बढ़िया गाना सुना है सर, रेडियो डीएस के लिए।
1: बताए सर।
2: सोनी कोड़ी
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश का गाना।

0: कम आ रही है आपकी, तेज बोले।
1: रईस खान बोल रहे हैं सर।
0: रईस खान जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: लोगो कॉलोनी से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सोन परी का सर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पे सोन परी सॉन्ग। खान जी कहाँ से बात कर रहे हैं?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6
1: यार मेरा बलम तो मुझे बिल्कुल प्यार ही नहीं करता है, घर की नौकरानी बना कर रखता
2: है। यार मेरा बलम भी मुझे पैर की जूती बना के रखता है।
3: अच्छा मेरा बलमा तो बहुत अच्छा है, मुझे सोनपरी बना के रखता है।
1: अच्छा

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहें बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और

0: इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों, आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप, शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
2: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
1: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
2: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
3: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
1: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

0: दोस्तों हेलो, फरमाइश इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर आपके ऋषि भाई को दीजिए विदाई इजाज़त। दोस्तों थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहेंगे आपके लिए आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम भजन संध्या कार्यक्रम। कीजिए थोड़ी सा इंतज़ार।
1: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
2: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
1: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
2: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
3: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
1: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

0: हाँ जी मां।
1: ओए छोटू की कह रहे थी तू ऑस्ट्रेलिया चला गया?
0: थोड़ी होने वाली नूनू मिलना आया सी। आ जाऊंगा परसों।
1: बेटा तेनू पता तो है अपने इत्थे ब्याह तो पहले मिलना ठीक नहीं।
0: चंगा संताली वाले हो, कहता रहा कि आ जाऊंगा मिल के।
1: हाँ
0: जी मां पहुंच गया।
1: चल जल्दी आ जी घरे।
0: आ जाऊंगा परसों। चंगा।
2: Surprise!
3: Surprise! Surprise!

शहर ते तेरी जिंदगी दे विच दिन आखरी है मेरा, आज तो बाद तेनू कदे चेहरा दिखना नहीं मेरा। मैं इश्क कीता सी ते तू वपार कीता सी, गलती तेरी नहीं गलती ता मेरी सी, क्योंकि तू नहीं मैं तेनू प्यार कीता सी।

0: मैं क्या जी, सत श्री अकाल।
1: ईद मुबारक। ताड़ी खास मेहमान नू ताड़ी एक चीज बड़ी तंग कर रही है।
2: की?
1: तेरी झांझर।
2: तू झांझर फड़ा मेरी।

0: बेबे शिंदा ना रोज स्कूटर ते आउंदा, मैं भी अज कॉलेज नूं स्कूटर ले जां।
1: तैनूं पता ही है तेरे बापू दे सुभाअ दा, जाके आप गल कर ले।
0: बापू जी स्कूटर नहीं, नहीं नहीं बापू जी मैं कॉलेज नूं स्कूटर।
2: ओ गातुन ऐ कर, अज तू कॉलेज स्कूटर ले जा, ते जांदा जांदा आरसीए नूं आ पैसे फड़ा जा।

0: चक्का मीच, चक्का मीच।
1: क्यों होया?
0: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा।
1: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: पर असी गुस्से हाँ तेरे नाल। बड़ा बंदा हो गया तू। सानू एक्टर नहीं लवेंगा आपकी फिल्म च?
1: वाह, तुसी तो बहुत वधिया एक्टिंग करते हो।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: ऑल सेट
2: या
1: सी यू टुमारो एट द शूट।
2: चलो बाय।

0: थे बड़ी।
1: अरे प्रगति
2: प्रगति,
1: अरे शूट के लिए लेट हो रहे।
3: शूट वो तो हो गया ना।
1: हाँ
3: आज शूट है, सपने से बाहर चलो।
0: आ

0: Hey guys, this is me Gurashi Singh and that is Tejinder Singh and I really hope हमारे ये नया पंजाबी वेडिंग मैशअप आप लोगों को पसंद आया हो
1: और अगर आपको ये मैशअप पसंद आया तो don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel.
0: The link is down below. Subscribe.

हेलो दोस्तों, आपने 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेड दोस्त आकाश, और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।